0: किसी सरकारी विभाग से जुड़ी कोई शिकायत दर्ज करनी है
1: तो आपकी सहायता करेगी भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के सीपी ग्राम्स पोर्टल पर समाधान दीदी।
0: समाधान दीदी 22 भारतीय भाषाओं में आपकी बात सुनती और समझती है। आपको बस अपनी शिकायत को बोलना है। समाधान दीदी की AI तकनीक आपकी शिकायत को सीधे सही मंत्रालय तक पहुंचाती है।
1: आज ही www.pgportal.gov.in पर जाएं और अपनी शिकायत दर्ज करें।
0: सारी शिकायतों का समाधान सीपी ग्राम्स की समाधान दीदी।
2: विंटनारो विविध भारती FM 101.3।

0: एसीपी एनडीटी कानून के विभिन्न प्रावधानों के तहत लिंग जांच करने और करवाने वाले दोनों को 3 से 5 साल तक की कैद और जुर्माने की सजा है।
1: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: వింటున్నారు వివిధ భారతి ఎఫ్ఎం 101.3.

0: भारती एफएम 101.3।
1: एसीपीएनडीटी कानून के विभिन्न प्रावधानों के तहत लिंग जांच करने और करवाने वाले दोनों को 3 से 5 साल तक की कैद और जुर्माने की सजा है।
2: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: వింటున్నారు వివిధ భారతి ఎఫ్ఎం 101.3.
1: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा
2: ऑफिस जाने की जल्दी मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी
3: ये आकाशवाणी है अब आप विमलेंदु पांडे से समाचार सुनिए
1: ऑफिस या घर से निकलते ही उफ ये ट्रैफिक
2: आकाशवाणी है ना
4: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त
2: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक
1: शाम सुहानी हो
5: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना सांझ के शो सिटी लाइट्स में हर रोज शाम 5 बजे
2: घर पहुंचते ही थकान कैसे हो मनोरंजन
1: आकाशवाणी है ना चयन की नींद से पहले कुछ भूले बिसरे पल हर पल
2: सफर में
1: आपके साथ
2: आकाशवाणी।

0: कहा है कि सरकार ने अपने शासन के दृष्टिकोण और कार्य संस्कृति में पावर टू एम्पावर के सिद्धांत को अपनाया है। नई दिल्ली में ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में श्री मोदी ने कहा कि भारत की प्रगति सामूहिक विकास और साझा अवसरों पर टिकी हुई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में प्रौद्योगिकी, डेटा, ज्ञान और नवाचार शक्ति के महत्वपूर्ण स्रोत बन गए हैं।
1: क्या नॉलेज केवल कुछ लोगों की ताकत बनी रहेगी या सबकी क्षमता बढ़ाएगी? यहीं से एक नया विचार जन्म लेता है और ये विचार है पावर टू एम्पावर, पावर टू कंट्रोल से आगे पावर टू एनेबल, पावर टू कॉम्पीट से आगे पावर टू कोलैबोरेट, पावर टू सक्सीड से आगे पावर टू हेल्प अदर सक्सीड।
0: नई दिल्ली में बिम्स्टेक के गृह मंत्रियों की पहली बैठक आज दिल्ली घोषणा को अपनाने के साथ संपन्न हुई। नई दिल्ली के बिम्स्टेक देशों ने सीमा पार आतंकवाद सहित इसके सभी रूपों की कड़ी निंदा की। घोषणा में सदस्य देशों ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप आतंकवाद तथा हिंसक उग्रवाद को व्यापक और निरंतर प्रयासों के जरिए रोकने, उसका मुकाबला करने और उसे समाप्त करने के अपने संकल्प को दोहराया। सदस्य देशों ने एक दूसरे से जुड़े, सुरक्षित, संकटों का सामना करने में सक्षम, विकसित और समृद्ध बिम्स्टेक क्षेत्र के निर्माण के लिए क्षेत्रीय सहयोग मजबूत करने की प्रतिबद्धता को दोहराया। सूचना और प्रसारण तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉ एल मुर्गन ने अपने पद और राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे एक पत्र में डॉ मुर्गन ने कहा कि दिहाड़ी मजदूर के परिवार से निकलकर केंद्रीय मंत्रिमंडल में सेवा करने तक का उनका सफर एक सौभाग्य है। गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने कहा है कि गुजरात में 3 नगर निकायों के चुनाव में भाजपा ने जीत हासिल की है। नई दिल्ली में संवाददाताओं में श्री शाह ने कहा कि 2 नगर पालिकाओं और 1 नगर निगम की कुल 104 सीट में से भाजपा ने 90 सीट जीती है। उन्होंने बताया कि उनके लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांधीनगर नगर निगम की 44 सीट से भाजपा को 38 सीट मिली है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का जिक्र करते हुए श्री शाह ने कहा कि कांग्रेस को 41 वर्षों में भी एक चुनाव जीत नहीं मिली। उन्होंने कहा कि भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता को SIR से जोड़कर खारिज करने की जगह कांग्रेस का आत्ममंथन करना चाहिए। पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर आज शाम कोलकाता के कालीघाट स्थित उनके आवास के बाहर कथित तौर पर चाकू से हमला करने की कोशिश की गई। राज्यसभा सांसद डोला सेन के अनुसार तनिष्ठा साहा नाम की एक महिला ने कथित तौर पर ममता बनर्जी की साड़ी खींची और चाकू से उन्हें चोट पहुंचाने की कोशिश की। फिलहाल महिला को हिरासत में लेकर कालीघाट पुलिस के हवाले कर दिया गया है। भारत के आनंद कुमार वेलकुमार ने पैरागुए में विश्व स्केटिंग गेम में 500 मीटर स्प्रिंट स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। 23 वर्ष स्पीड स्केटर ने 40.856 सेकंड में तीसरा स्थान हासिल किया। मौसम विभाग ने कल तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में तेज बारिश की बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने का अनुमान जताया है। विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और पश्चिमी राजस्थान में ओलावृष्टि की भी संभावना व्यक्त की है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।